सांस श्याम तोरी मूरत हृदय समानी श्याम तोरी मूरत हृदय समानी अंग अंग व्यापी